पाक कोश करवानो, एक स्क्रू होए स्क्रू, ये ना होए तो मेरे आगर जता नड़े, पहला तकलीफ ना था, पर जरे खूब स्पीड में चलते ते वक्ते स्क्रू आरु होए नड़े था, इसमें तो पाक करो, ते भी तो सत्संग पाक करो, पची दोष दही अब सत्संग ने, कि मैं सत्संग कितना वर्ष सुधी करूं, कहीं थे होने, पता बराबर क्या करूं थे, बराबर करूं तो खामी रह नहीं, घर में जो हरि भक्त रहे, घर में ग्रस्त आश्रम, घर में जो हरि भक्त रहे, तेरे संत ना दास थे न रहो सलामती, ग्रेट सिक्योरिटी, संतना दास थीन ये बंधु करे, ये गाइड करे, अपने आगर बधारे, बंधु करे, जो संतना दास थीन संत, एले संत विषय ये तमने विषय बाजू लिया, देखा ही नहीं ऊपर ही पर अंदर यदि दानत हुए ना तो तुमने आबाजू सर का है पर आई कच कचास हुए तो तुमने क्या ना क्या ले जाए घर में जो हरि बकरे तेरे संदा दास तीन रहो धन में चित परो परोवा तो हुए तो स्त्रीनो त्याग करवा दे शुद्ध है जो बे कनेक्टेड धन से ये अर्धी स्त्री थे पन रूप जुदू से पन धन मा होए स्त्री वाले वा स्त्री होए धन मा एक कनेक्शन से था है जो घर मा जे हरि भक्त रहे तेने संदा दास सिंधु धन में चित परोवा तो हो तो स्त्रीनो त्याग करवा दे शुद्ध है अने मान रूपी विष तो तेथी पन बाहर है आ सत्संग में तो मारे के मान अपमान एम कसोटी थी जाए आप मान ने कितनों तो साचवी है एने त्याग करो जैसे अपने पंपा रही है जराक अपमानता है ना जराक भारे अपमान नहीं जराक अपमानता जो आता है बड़ा बैठा है सो पहली लाइन वाला ने पांचवी लाइन में धकेल है अरे पांचवी लाइन में आगे धकेल है सोचा आटला माय कहीं तमें भाई पांच मिले में जाओ आठ लुट के न पित्तू थे सत्संग में आवेद नहीं भाई पूर्ण होते जय स्वामी नारायण ये आज इतने अपमान मान अपमान में स्थिर है ये बहुत मोटी बात है बहुत खरे खर पन जितलो मान मुकाय इतलो आपने सलामती जितलो